हैप्पी संडे क्राइस्टचर्च, कैसे हैं आप सभी? वेल, आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं रेडियो के जी का साथ है, मैं आपका साथी आरजे क्रिश। और जी हाँ, बिल्कुल हर संडे की तरह हम, वेल ऑलमोस्ट हर संडे की तरह हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और जब भी हम संडे को आते हैं तो वीकेंड का जो हैपनिंग है, यानी फ्राइडे के बाद, हमारे फ्राइडे शो के बाद हमने क्या किया, वेयर डिड वी गो, व्हाट वी डिड, स्पेशली हर सैटरडे को हमारा कोई ना कोई इवेंट होता है, उस इवेंट से शामिल होकर ही हम आपके पास आते हैं। और ये पूरी जानकारी आज हम आप लोगों के साथ बारी बारी से शेयर करने वाले हैं। चलो हमारे साथ जितने लोग फ्रिक्वेंसी पर जुड़ जाते हैं, FM 96.9 यानी प्लेन्स मीडिया 96.9 पर, खासतौर पर उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से नीरज जी, आपके आपके सभी दोस्तों के लिए ये अगला जो गीत है, इसमें हम आप सभी को याद करना चाहते हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो के जलोकल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

0: जी हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे। सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स पोथीचोर, यस, टच ऑफ केरला राइट या इन क्राइस्टचर्च, क्योंकि ऊपर टच इन ग्लो लिखा है ना, तो आई एम गेटिंग देम कंफ्यूज्ड। और चले चलते अभी अंशुज रियल फ्रूट आइसक्रीम। अंशु आंटी फिलहाल के लिए हॉलीडे के लिए शी इज इन ब्रिस्बेन और मेलबर्न समवेयर,
1: शी इज तो अंशु आंटी घूमती रहती है। बट वी डू वांट टू से अ बिग थैंक यू टू अंशु आंटी,
0: क्योंकि अंकल का हैप्पी 70th बर्थडे भी था।
1: वाओ, रियली अंकल
0: सेलिब्रेटेड विद देयर डॉटर
1: in Australia. Yes. Yeah, happy 70th birthday uncle, and 70th birthday uncle. Actually, कल हमने भी एक 70th birthday celebrate किया था. But uncle और auntie, आपको एक चीज कहना चाहते हैं, running a small business is not easy. Small business run करने के बावजूद, you came on board as a sponsor for Ramayan, and you were the first one to actually pay us for our bills. So, auntie, we are really grateful to you that you supported our Ramayan, and we also remember जब हम रामायण का सिर्फ सोच रहे थे और हमने वेन्यू बुक किया था, तो आपने हमसे कहा था कि क्रिश जी भी, मुझे लगता है कि तुमने ये छोटा वेन्यू बुक किया है, तुम्हें इससे बड़ा वेन्यू बुक करना था। पर हम सोच रहे थे स्टार्टिंग में 550 सीट्स कैसे हम बेचेंगे, काफ़ी स्ट्रगल होगा। बट आंटी, अब हमें लग रहा है कि आप जो कह रहे थे वो काफ़ी सही कह रहे थे।
0: आंटी को हमेशा से हमारे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था, एंड आई थिंक दैट ट्रस्ट पेड ऑफ। लाइक राइट नाउ वी हैव सोल्ड आउट द शो, बट वी आर गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट, सो मेनी पीपल सेइंग इधर ब्रिंग अ सेकंड शो और रिक्वेस्टिंग फॉर मोर टिकट्स, विच इज पॉसिबल तो नहीं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स, एंड देन वी डू नॉट वांट टू पुट अवर आर्टिस्ट डांसर्स थ्रू फेटिक्स, यू नो, अगर आप बैक टू बैक शोज कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्रेशर होता है 2 घंटे। सो एनीवेज, मे बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह, लेट्स सी। पर थैंक यू अंशु आंटी कमिंग ऑन बोर्ड, एंड इसके साथ साथ नीले धमलिया जी, थैंक यू सो मच। आप, you are one of those guys जो आप स्पॉन्सर कर देते, you know, जो दान देते, नहीं कहते गुप्त दान देते, and you don't even tell people, you have asked us not to tell anyone, but well, we want to give you a shout out. एंजी जी, इसके साथ साथ हमारे पास प्रिया जी,
1: मनीष कम्युनिटी केयर एज वेल, मनीष कम्युनिटी केयर, अगर आपके घर पे बुजुर्ग है, जैसे हम कहते हैं यू आर बिजी एट योर वर्क, वी ऑल गेट बिजी एट आर वर्क, वी ऑल्सो नीड टू फीड आर किड्स, रन अ हाउस एंड एवरीथिंग, बट आपके घर पे कोई ऐसे इंसान है जो बीमार है या बुजुर्ग है, एंड यू आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर देम, don't worry, because MC Care does care for your elderly at home if you want to take them out or anything. So thank you so much Laureen Julie Maniji or Robert Maniji for such an amazing work that you do in the community. So if you have someone who needs to be looked after at home, contact Manish Community Care.
0: Aur agar meri tarah acha smile rakhna hai to
1: acche smile ke liye aapko jana hai Priya Narang ji ke paas from Blossom Dental. We had the opportunity to visit her clinic and see her work as she does. So yeah, if you want any dental treatment even for kids, do go to Blossom Dental, Priya Narang ji.
0: ये अपनी ध्वनि है,
1: ये अपनी ध्वनि है, हाँ
0: जी, हाँ ध्वनि जी कैसे हैं, वेलकम टू आवर शो। अभी पिछले दिनों से, अभी इनको भी 2-3 दिन से हम ऐसे ही मिल रहे हैं फंक्शंस में, डांस में, थैंक यू ध्वनि जी। और इसके साथ साथ चलते हैं videographers and photographers on the day. Yes, बिल्कुल PP Production, प्रतीक पटेल, इसके साथ साथ JK Images. इनका काम देखने के लिए आप इनके पेज जाकर देख सकते हैं, and you'll see how super talented they are. Social media partners, GBG.
1: ISCC Indian Social Cultural Club, जो were the partners for Bhajan Clubbing, and उनका दिवाली भी आ रहा है 25th of October को, Indian Social Cultural Club का, to mark the date. And Digiverse New Zealand, Gauri ji, all the way from Auckland, who has helped us with our poster and everything. Gauri will also be part of the backstage for Ramayan. So thank you Gauri for your support with Ramayan.
0: Aur iske sath sath our media partners jahan se ye program ka live prasaran ho raha hai, there we go, Plains Media. So Nikki, Priya and Charlie and the entire team, Nico, thank you so much. And finally Divi ji, jo pyare posters hum print kar abhi aadhe se jagah crush hai, acha hum kya kare, jahan jahan par humne poster lagaya hai hame nikalna padega na, what do you think?
1: I think hame jaake nikalna
0: padega, it's like false advertising ho raha hai abhi na.
1: Yeah, abhi tickets nahi hai sir, but Nirav Jani ji from Print Pro, thank you so much. Sath hi sath रामजत क्राइशिश नवरात्रि टीम को और ट्रियो इवेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, बिकॉज यू गाइज ऑल्सो केम ऑन बोर्ड टू प्रमोट अस ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस, विच वॉज रियली हेल्पफुल. सो थैंक यू सो मच ट्रियो इवेंट्स एंड क्राइशिश नवरात्रि पेज.
0: जी हाँ, वी आर स्टिल काइंड ऑफ यू नो, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, बी डेजल्ड बबलिंग फ्रॉम द फैक्ट कि हमने अपना शो ऑलमोस्ट 1 month पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है, एंड डिसअपॉइंटेड लास्ट नाइट वी वेर, कल हम एक 70th birthday karne gaye the. It was a Fiji family. So Pushpa aunty ji, aapko bhi happy belated happy 70th birthday. And when I entered there, of course, GB were like with our other troops. I had difficulties moving from point A to point B. Kyunki jo log the organizers, they were talking to me, and every table was like, Krish, come here, Krish, come here.

0: When, how can we get the ticket? Why didn't you tell? I was like, अरे भाई हम महीनों से बोल रहे थे,
1: नौ महीनों से हम प्रमोट कर रहे थे, तो अगर आप हमें अभी बोल रहे हो कि यार टिकट दिला दो, टिकट दिला दो, ऑनेस्टली प्रमोशन फुल पीक में हम कर रहे थे, तो अगर आपने टिकट नहीं लिया, वी आर सॉरी दैट यू हैव मिस्ड आउट, एंड हमें नहीं पता इसका क्या तरीका है कि आप लोगों को किस तरह हम सॉरी बोले, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मार्केट, आप लोग लेट हो गए.
0: एनीवेज चले, आज हमारे पास स्टूडियोज में एक बहुत ही प्यारे गेस्ट आए हैं, लाइक आई थिंक
1: वंस अगेन रामायण से कनेक्टेड भी है.
0: बिल्कुल.
1: These beautiful young ladies, I would say young ladies, are helping us out with our Ramayan props. तो रामायण में जो जो props की जरूरत है, जो आप उस दिन आओगे तो देखोगे कि उसके पीछे जो hard work किया है वो team आज यहाँ पर है.
0: जी हाँ बिल्कुल. I remember एक बार my late dad used to say to me कि एक parent के लिए you know ऐसे कुछ बात होते थे, हम मंदिर में बैठे कहीं तो बैठे थे कि एक parent के लिए सबसे proud moment कब होता है, तो he told me few times, but he also said कि एक parent के लिए एक proud moment तब होता है जब आपको आपके बच्चों के नाम से जाना जाता है, जब कहते हैं कि आप उनके माँ हो ना. तो आवर डियर फ्रेंड हुम वी मिस्ड अ लॉट इन वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं फ्रेंडली पर्सन, सच अ गॉर्जियस, सच अ ब्यूटीफुल, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड उन्होंने तो कहा था ना हाय पेशेंस पिछली बार.
1: आपको पता है जब हम बात कर रहे हैं माही की, द वन एंड ओनली माही जो टीडीए क्रू में थी, एंड शी इज सो हिलेरियस, सो हिलेरियस. She did a short film. No, she went to Auckland and she was a background dancer for one of the artists. She went with the Sean's crew. I don't know if you guys remember. And she came back to TDA to dance and she's like, do you guys know I'm popular and you guys are just peasants?
0: That's
1: Mahi for us. Such a lovely soul. So hilarious. And so bubbly के हमेशा हमारे dance group में इतना fun वो लेकर आती थी.
0: Even while she was in India, like you know हमारे जो भी post होता था ना on a regular basis, जैसे हमारे insta पे facebook पे काफी सारे दोस्त friends हैं, but they are like some गायब, कब गायब हो जाते, कब आ जाते, पता ही नहीं चलता कि ये लोग जिंदा है या नहीं. पर माही का था direct बात नहीं हो रहा था, but post like होते हैं, you know कि okay, you know she's well and fine. So Mahi, thank you so much. But today we have got the person who has brought Mahi in this world.
1: Yes, and we are talking about टैलेंट, और यहाँ पर हम टैलेंट की बात करने वाले हैं और कम्युनिटी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले. तो लर्न टू मास्टर द फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया, अगर आपको आर्ट सीखना है, फोक आर्ट ऑफ इंडिया के क्रिएशंस अगर बनाने, सस्टेनेबल आर्ट मिनिएचर इंडिया वर्कशॉप जो वीकली होता है हर संडे को, मल्टीकल्चरल से होता है फ्रॉम 12:30 टू 3 o'clock, if I've got the time right. It is free class that anybody can attend. The class lot is for 20 people. That's the max that they can go. But this is a free class. And honestly, aaj hum ye dekhkar, hum khud Krish ji ko bol rahe the ki Ramayan ke baad probably we should try this. Because hamara mind itna busy rehta hai ki it's good for a mindful creativity and relaxing, fun-filled, stress-free time for us. So if you guys are interested in anything like this, we're going to provide you with more details.
0: जी हाँ बिल्कुल. और जैसे जीवी जी ने कहा है कि ये बहुत ही यूजफुल होता है, स्पेशली अगर आप यू आर यू नो well we are stressed about a lot of things, it could be anything, so these things kind of gets you focused, or once you come up with your success to it aapko aur bhi happiness deta hai. So we'll talk more about that. Hamare sath Devlingam Pillai ji all the way from Lambasa jud chuke hain. Epson Abraham, welcome to our show. Inke sath sath Saraswati ji, radhe radhe, saying beautiful couple, a nice program as always. Saras ji, what's cooking today? Sunday hai, what's cooking today? Aur Devlingam ji, aapko bhi namaskaram, and namaskaram to everyone over there. So, Jibiji, without taking much time, let's go on to a lovely guest. And we'll go into a song, or by the time we come back, so we'll also get a chance to talk to them more. Ye geet, khas taur par jitne log humare saath frequency pe sun rahe, one of my favorite song. And someone I just wish I had seen acting right now. Actress I found, like, you know, so beautiful back in the days, Divya Bharati, like Divya Bharati with Sunny Deol, Saath Samandar Paar. Do you love this song?
1: I love the dance in this song.
0: I used to play this song when you were in India.
1: Oh, हम भी बहुत पुराने ज़माने में बहुत play किया करते थे.
0: उस समय कौन सा समंदर पार होते? अच्छा चलो, एप्पल खाने के दिन याद आ गया. कोई नहीं, listening to radio के चलो कर.
1: Only on Plains Media 96.9. Often, I don't know.

0: जी हाँ बिल्कुल, अभी जिंदा हो तो जीने जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ये गीत की फरमाइश आई थी हमारे अच्छे साथी, हमारे दोस्त इधर ऑनलाइन देख रहे हैं, पीयूष रस्तोगी जी। चलिए इसी गीत के साथ आज हम आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। वी हैड अ फैंटास्टिक डे विथ गीता जी और उनीति जी फॉर लर्निंग सो मच अबाउट आवर आर्ट्स एंड यू नो क्राफ्ट एंड आवर कल्चर।
1: एंड आई थिंक दैट आई रियली वांट टू डू इट क्रिश, क्योंकि हमारा ब्रेन यू नो सेटल नहीं होता है। मे बी आई शुड ट्राई इट, आई डोंट इवन नो इफ आई विल।
0: हम तो चाहते हैं कि आप संडे को कहीं चले जाए, जबकि जहां पर आपका माइंड अच्छी तरह से।
1: संडे को क्या आप इजाजत दो तो
0: हम, इजाजत है
1: हाँ, आप इजाजत दो और आप पैसे
0: जा,
1: दो
0: जा,
1: दो इजाजत। वैसे हम आपसे इजाजत लेते नहीं है, बट आप अगर बोलो और आप हमें अपना बैंक अकाउंट और पैसे दे दो तो हम तो दुनिया के शहर में निकल जाए,
0: हम अपना किडनी भेज देते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर अनदर संडे। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, जो लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे है थैंक यू सो मच, जो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पे, कहीं जाइए मत, आपसे हम और भी बात करते हैं। चलिए फाइनल गीत में हम खास तौर पर आरजे जीबी को याद कर लेते हैं, जिनको कहीं पर जाना है, इस गीत में हम उनको याद करते हैं। बाकी जितने लोग थे, नीरज, यू एंड योर फ्रेंड्स, विल सी ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी गॉर्जियस
1: आरजे जीबी।
0: बाय।
1: Ha ha ha!